करियनराग श्री गुर शब्द कमाई जिन जीते पंच बिकार तेन संतन का वंदना श्री चरणन पर तार एकंकर सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है।

सताणी हर प्रताप जन अवन जानी ओत पोत जन हर रस राती सुन समाध नाम रहमाती आठ पहर जन हर हर जप हर का भगत प्रगट नहीं शव पै हर की भगत मुक्त बहु करी नानक जन संकेत दरि पार जाति हो हर को नाम काम दीन हर हर गुण काम सबति उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख नाथ नाम की महिमा संद्रत वस संत प्रताप दुर्द संग संगवड़ पागी पाई संग शिवा नाम त्याय नाम तुल का शवर न हुई नानक गुरु खनाऊ पावे जन को श्लोक बह शास्त्र बह स्मृति पीख सर्व टोल पूज सनाही हर हरि नानक नाम अमोलास्पति जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र समृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया शक्ति आवन मध्य फिर प्रकार की बह जतना पुन दान हूमि बह रतना शरीर कटाय हूँ मैं कर राती वर्णिम कर वह पाति नहीं तोल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी एक बार नाम खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महादास तपी सरथ युवा गण माही हुमत प्राण कन का सब है।

आसन जब पूर्ण करता प्राव सोये तब जम की त्रास कह हो के सोये जब अवगत या गोचर प्रावी का तब चतर गुप्त केस पूछत लिख जब नाथ निरंजन अगोचर आगा दी तब कौन छुटे कान बंदन।

अपमान कर अपमान जहाँ स्वरूप केवल जगदीश है तह शाल क्षेत्र लगत कह की स जहाँ जो स्वरूप जो संग समावै तह कह पुका अंतर बतावे कर्ण करावन कर्ण आर नान कर्तिका नह समार जाब अपने सुभा अपन संग बनाई ताब कमन माय बा मित्र सुत पाय जह सर्व कला जाप है प्रवीण तह वेद गति कह कुची न जावे अपन आप आप गुर तार तब सकन अब सकन कह विचार जह अपन ऊजा अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया जीरा विस्मन विस्मरा विस्मा नान कबनि का जान हो आप जहाँ शाल शेत अपेद समाया ऊहा कस व्याव माया स्वाप आदि स देह गुण का नाह प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत लग चिंता जह अपन आप पति अर तह कौन कथा कौन सुन निहर भव्य अंतूज तूज नानका उस कवाप पाहु चह प्रचिव प्रपंच कर देह गुण में किन विस्तार

मुक्त कर संसार नानक दे जन का सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जग नाउ नानक पूरा पाया पूरी के गुण गाव अष्टपदी पूरे गुरु का सनपति पार ब्रह्म निकट कर पीख सिमर गोविंद मन अंतर की उतर चिंदास अनियत त्याग त्रांग संत जन की दूर मान मांग आप छोड़ बेन्ती करहु साध संग अग्न सागर तरहु हर धन की परलिहु भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आ

गत मित तुम ही जानी, बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस जिठे शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनाउन द्यावै ताए। सब ताई होए सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब ताई होए सहाय।

प्रसाद प्यारी साध संगत विच वरताउण दी आग्या होवे जो जी सके आप जी दा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपे सतगुरु जी आप अपने स्थानां दीआं चढ़दीआं कलां बख्शिश करनीआं आरंभे होए कार सेवा दे कारज संपूर्ण कराउणे सतगुरु जी आप जी अपनीआं संगतां वास्ते लंगर हा

जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावहे। जय प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद पार पटम पर हटावे तिसे त्यागत अवर लुभावे। जय प्रसाद तू सबको मान है मुक्ता को जस रसन बखान है। प्रभ जी जब दरगह हिमान पावे नानक पसेती कर जावे। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद अभूखन पहरी दे मंत्र सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद बाग में लगत नारा प्रोय प्रभ अपने मना।

आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास्तारी जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद सुन है करनाद जय प्रसाद पिख है बिस्माद जय प्रसाद हंस कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है।

साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले। साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग ना बिगा पैर। साध के संग नाई हो ताप, साध के संग तजे सब आप। साध के संग ना कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै। साध के संग बसै थानु चै, साधु के संग महल पहुँचै।

ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।

परतै रूप न पेखे नेत्र साध पिटेल सन संघेत गुर प्रसाद भिख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे वैष्णो सो जिस सुपर सुपर सन।

केवल भगत कीर्तन संग्राज है। आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे।